आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है? तो चलिए श्रोताओं आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकाल कर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है, नहीं ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के

0: व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट, फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।

0: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
1: जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
2: जी जी चलो चलो देखते हैं।
0: चलो चलो चलो चलो, चलो चलो जल्दी चलो।
3: अहोम के महाराज की जय हो।
4: जय हो, जय हो।
3: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
5: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Output. A ti सुंदर हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको यह नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा। लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओह।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
6: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
4: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
6: ओह।
4: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
6: अच्छा।
4: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
6: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
7: जी।
6: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
4: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
6: जी।
4: जिसका अर्थ है फसल के मौसम

0: मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर मृगेंद्र जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटी, जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी? एक मिनट, गया मेरा डब्बा, ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना।
2: हाँ।
0: शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था।
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओ चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।

0: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
1: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
1: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते, अरे सुंदर है।
2: अरे सुन तो,
1: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बात देखी तुमने?
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
0: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाल मित्रों नु स्वागत करू छू बाल सभा मां।
7: एक हतो फेरियो, ए फेरियो टोपी वहचवानो धंधो करे, सरस मजानी अलग अलग कलर नी टोपियो वहचे, लाल पीली वादड़ी गुलाबी चांबली, सरस सरस मजाना भरत काम करेली टोपियो पण वहचे। तेना खभे एक थेलो हतो, ए रोज शू करे, थेला मा टोपियो भरे अने गामे गामे वहचवा जाय, वहचता वहचता ए बूमो पाड़े,
8: टोपियो ले लो टोपियो, सरस मजानी लाल पीली लीली वादळी जांबळी टोपियो ले लो टोपियो, ए बाळको माटे टोपी ले लो, तमारा बच्चा माटे टोपी ले लो, तमारा वांदरा माटे टोपी ले लो, तमारा गलुडे माटे टोपी ले लो, टोपी ले लो टोपियो, सरस मजानी टोपियो।
7: आम करता करता एक वार ते जंगल मा गयो, त्या एने थोड़ो थाक लाग्यो, थाक लागता एक झाड़ नीचे शांति थी जईने बैठो, अने पोतानो थेलो झाड़ना थड़ पासे मुक्यो, पछी ते थोड़ो आराम करवा माटे आडो पड़ियो, अने आराम करता करता जोत जोता माटे सोई गयो।

0: दस बार।
1: राजा जी कहे फिकर नहीं फिकर नहीं, उकेल आपनो थाशे आज, राजा नू फरमान छे आज, कपाशे नहीं एक पण झाड़, ववाशे आज थी बमणा झाड़।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो बालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो बालनपुर पर तमारी वात ने पहुंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9512968888 9512996688। ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 9512966688 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર।

अक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: आर्ट्स एंड किरण भट्ट निर्मित, किरण भट्ट द्वारा दिग्दर्शित सुपर हिट गुजराती कॉमेडी नाटक छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं पत्नी प्रीमियर लीग, जेमा क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना फेमस केतकी दवे पण छे, तो हास्य ना चौगा ने छग्गा थी भरपूर आ मस्त नाटक मा आवानू भूलता नहीं। पास लेवा माटे कॉन्टेक्ट करू रोटेरियन शशीन मेवाड़ा 9427401312 अथवा रोटेरियन परिन पंड्या 9428677113। तारीख 7 ऑगस्ट 2026 शुक्रवार रात्रि 9 वागे कानुभाई मेहता हॉल पालनपुर। चालू परिवार ने मित्रों साथे हास्य नी एक यादगार सांज माणी अने साथे सेवा कार्य मा पण आपनो अमूल्य सहयोग आपी। मळीए 7 ऑगस्टे हास्य नी फुलटू मजा माटे।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समृद्ध रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Subscribe.
1: Subscribe.
2: Subscribe.
0: Subscribe, Saluka. Subscribe.
3: कुछ ना कहो बस सब्सक्राइब
1: कर दो यार सब्सक्राइब
0: प्लीज सब्सक्राइब बोलो ना प्लीज सब्सक्राइब प्लीज
2: सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ ना
0: कुछ भी ना
2: सब्सक्राइब

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी की जिंदगी की कुछ ऐसी दबी हुई कहानियां आज मैं निकाल के लाई हूं आपके लिए, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आशा जी 16 साल की थी और उन्हें उनका पहला ब्रेक मिल गया था। वो डांसर तो हमेशा से थी ही, अदाकारा बहुत अच्छी थी तो लोग उन्हें जाना करते थे। ये मूवी जिसमें उन्हें ब्रेक मिला था वो मूवी थी विजय भट्ट जी की मूवी गूंज उठी शहनाई। लेकिन विजय भट्ट जी ने कुछ सीन शूट किए इनके साथ और उन्हें लगा कि ये स्टार मटेरियल नहीं है, दम नहीं है इस लड़की में, और उन्होंने आशा जी को मूवी से निकाल दिया। लेकिन मानिए किस्मत कैसे खेल खेलती है, तुरंत इस मूवी से छूटने के बाद ही उन्हें दिल दे के देखो मूवी मिल गई, जो कि शम्मी कपूर जी, 10 साल बड़े उम्र में आशा जी से शम्मी कपूर जी के साथ में थी ये मूवी। एंड दिस वेंट ऑन टू बी अ सुपर डुपर हिट, जिसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। आशा जी आगे बढ़ती चली गई और शम्मी जी उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बन गए, और सबसे अच्छी जोड़ी भी इन दोनों की स्क्रीन पर लगती ही थी, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरी मंजिल इनकी सबसे बड़ी मूवी बनी थी वैसे, उससे गाना सुनाएंगे आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन फिलहाल कन्यादान फिल्म से गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, उन खतों के नाम जो कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने तकिए के गद्दे के नीचे छुपा के रखे हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आशा पारिक जी स्पेशल है ये एपिसोड। मैं हूँ रुचि आपके साथ। खुश मिजाज ये एक शब्द है जो कि हम आशा जी की जिंदगी और आशा जी की पर्सनालिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें जो मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आशा जी की जिंदगी पर बेहद सूट करती है। है कुछ ऐसी छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को यार, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर हाल में खुश रहो। एक तरफ जहां आशा पारेख जी, जैसा मैंने कहा, इतने खुश मिजाज इंसान, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग थे जो कि आशा जी से बहुत जला करते थे, स्पेशली उस जमाने की एक्ट्रेसेस। कौन थी ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

वेलकम बैक वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं हूँ रुचि आपके साथ। जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है ज़िंदगी में, वैसे ही दुश्मन भी हम बनाते चले जाते हैं, वैसे ही लोग हमसे जलने भी लग जाते हैं। मैं मानती हूँ जो इंसान सबसे ज़्यादा सफल होता है उसके उतने ही कम दोस्त होते हैं। ऐसा ही कुछ आशा पारेख जी के साथ में भी हुआ। आज का हमारा ये शो जो है वो आशा पारेख जी पर आधारित है, उन्हीं के कुछ बेहतरीन गाने भी सुन रहे हैं आप। एक समय ऐसा था जब सिमी ग्रेवाल जी और अरुणा ईरानी जी आशा पारेख जी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि सिमी ग्रेवाल जी का मानना था कि दो बदन फिल्म में उनके रोल को छोटा कर दिया गया था, काट दिया गया था आशा पारेख जी के कहने पर। और ऐसा ही कुछ मानना था अरुणा ईरानी जी का भी कारवां फिल्म के टाइम पर। लेकिन मज़े की बात यह है कि आशा पारेख जी खुद कहती हैं कि इन दोनों को अवार्ड्स मिले थे अपने रोल के चलते। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड सिमी ग्रेवाल जी को भी मिला था और अरुणा ईरानी जी का भी नॉमिनेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके रोल को सही ढंग से कटवाया था आशा पारेख जी ने। आशा जी कहती है कि अगर जैसा रोल पहले लिखा गया था वैसा ही मूवी में आ जाता तो लोगों को वो मज़ा नहीं आता। बताइए, तो ऐसी हैं हमारी आशा पारेख जी। इसी बात पर उन्हीं का एक बेहतरीन गाना आपको सुनाते हैं अगला, और कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मूवी थी जिसे नहीं करना, जिसे ठुकरा देना आशा जी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर रह गया। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए जापानी परियां।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी स्पेशल एपिसोड है ये। आशा जी ने ना तो कभी किसी से शादी की, ना ही किसी के साथ उनकी कोई बड़ी लव स्टोरी रही। एक अकेली चीज जिससे आशा जी को बेहद प्यार हमेशा रहा, वो था डांस। इसी डांस के चलते आशा जी ने लंबे समय के लिए देश छोड़ दिया था और अलग अलग कंट्रीज में जाकर के वो अपने शोज, अपने परफॉर्मेंसेस किया करती थी, और उसी के कारण इनके हाथ से एक बहुत बड़ी मूवी छूट गई थी, और वो मूवी थी सीता और गीता। हेमा मालिनी जी जहाँ रातों रात सीता और गीता मूवी करके सुपरस्टार बन गई, वहीं आशा जी ने जब देश छोड़ा था तब वो बहुत बड़ी स्टार थी। लेकिन जब वो कुछ सालों के बाद अपने सारे डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह ख़त्म करके देश में वापस आई, तो जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी जैसे बड़े बड़े स्टार्स खड़े हो चुके थे। कुछ समय तक के लिए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को फिर भी बनाए रखा, चलाए रखा, लेकिन फिर उन्हें मज़ा नहीं आया और उन्होंने एक्टिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोशल वर्क में आज भी कई लोग आशा पारेख जी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ में लेते हैं। तो चलिए आशा जी के इसी प्यार भरी जिंदगी के नाम अगला गाना बजाते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म से, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ आशा जी करियर। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आप।

रेडियो बालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो बालनपुर पर तमारी वात ने पहुंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 9512-9966-88 9512-9966-88। फरी एक वार नंबर हूँ तमने जनावु छु 9512-9966-88 9512-9966-88 पर તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM। जय जय शिव शंकर।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: ओ सोनिए मां छुट्टिया

शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टैलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना